0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM.

0: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM and on DAB Channel 7D in South Hampshire and via the website hoursfm.co.uk.
1: सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
4: Radio, the medium that's now large.
5: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@ourzfm.co.uk.
6: हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: इस गाना मारी पसंद नहीं, मार फेवरेट गाना।
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर, जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Hello, I'm calling from Stockholm, Sweden. This is Elton's mother. I just want to say it's amazing to hear your voice on the radio. I'm so proud of you. I love you, I miss him, and I'm so excited to come to Southampton for a visit.

0: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोभी।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। सलाम,
1: आपको वेलकम कहता हूँ मैं कराची पाकिस्तान में।
0: हाँ जी, शुक्रिया।
1: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर को एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ एफएम। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यकजा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
0: और अजमल साहब, इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: बस थैंक यू वेरी मच, और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें, और उम्मीद ही करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
0: Thank you very much, Ji. Take care, Allah Hafiz. Bye-bye.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio, we're all about here.
3: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
4: Radio, the medium that's now large.
5: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
6: Ek pal ki laparwahi.
7: Uncle, mujhe to padi ho ke aeroplane udana tha. Pilot banna tha. Mujhe padi ho ke doctor banna tha. Main to sabse bada business start karna chahta tha.

number you have dialed is currently busy on another call. Please try again later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए।

0: How do you say it? A was or a was?
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Hi, this is Anna Salman and you're tuning into Awaz FM. You can follow me on Instagram at annasalmandar.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही एक पल की लापरवाही

0: Southampton's Community Radio. Hours FM. 24 hours a day. Hours FM. Online and on
1: एक
0: air.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था. पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: How do you say it? A was? Or a was?
1: Now, hands up, anybody out there, if you know what a Gruffalo is. You do? Oh, that's good, because it's a kind of mythical creature with large paws and a lot of fur. And apparently it gets its name from being half a grizzly bear and half a buffalo.
2: That was Felix.
3: Southampton's Community Radio, Ours FM.
4: At Southampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southampshire College Group.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
6: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
7: Putra gaana ta sunna chahne ha utthe radio par jawab dena par lassi ale saage ni recipe te dasso na jehdi tusa bangna ali dasne ho dui dasne ho lassi ale saage ni dasso je pure England ich tuma pain ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਭਣੀ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਲੱਸੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕੀ ਪਸਾਣੇ

0: दिल में जो तड़प है मिट्टी का ये असर है, ये हौसला नहीं बेवजह।
1: बुरी बात
2: जुनूनी ऐसा वो टिक नहीं सकते अपने आगे, लहू गरम तू इसको बहने दे बहाने ना दे, फतह तो हो

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Hello, you beautiful people. My name's Sunny. I host The Devil Rises show every Saturday from 2 to 4, only on a WazFM 99.8. Remember to tune in. Don't miss it.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: पुत्र गाना तो सुनना चाहने हाँ, उत्थे रेडियो पर जवाब देना पर लस्सी वाले साग नी रेसिपी तो दसो ना जी तुम बैंगण वाली दसने हो, दुई दसने हो, लस्सी वाले साग नहीं दसो जो पूरे इंग्लैंड धुआं पैन भाई साढ़े खूह पर कि बूटी लभनी बात हुआ समेत तो लस्सी किसा भाई कुछ की पकाने।

0: every Saturday at 5. It's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज FM.
12: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए। तुम रूठ के मत जाना, फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: Hello, I'm Sapya Kaul. You are listening to Awaaz FM.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: Well, before we get into it, I've got a little chip on my shoulder.
1: Go on, then.
0: So, I listen for this show's purposes, shall we say, research to a national radio station. They're based in Little Old England.
1: Yep.
0: They do a phone-in, the two-word phone-in, and you're only allowed to say two words on this subject. This week, they mixed up a little bit. They said three words, and do you know what the categories were? Your bin day.
1: Right.
0: And your favourite orange thing. Yeah, and it had to be three words. What would you say for them three words?
1: What, for bin day?
0: What's your bin day?
1: Not regular enough.
0: Three words! No, just three. You have to say Tuesday.
1: Oh, right, okay.
0: Yeah, and then your favourite orange thing in two words.
1: Saturday is my bin day.
0: Saturday, and your favourite...
1: No, Friday. Yeah. It's Friday.
0: Oh, yeah, okay, this isn't going too well.
1: No, it's not.
0: Let's start again. Take three. Caller, what's your bin day?
1: Friday.
0: What's your favourite orange thing in two words?
1: Donald Trump.
0: So these are the sort of answers this radio station gets. So my point is, we have this radio station, we have this platform. Well, we can't get one phone call.
1: No. We've had... Who phoned up?
0: Danny.
1: Danny.
0: Twice.
1: Yeah. And he didn't even tell us what his favourite orange thing was.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: साउथहैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं मैं तुम्हें सलाम करता हूँ इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं उनमें एक प्रोग्राम शेर नगमा भी है ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर नगमा हर जुमेरात को दिन के दो बजे शुरू होता है मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं ज़रूर इसमें शामिल हों वक्त किसी का दोस्त नहीं ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए वक्त के साथ चलें वक्त की तज़ीम करें आखिर में दो शेर जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था या खुशबू जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं शम्मे बज़ में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं दिन डूबे तो छुप जाते हैं साए आखिर साए हैं

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Shall we do some adverts and then come back?
3: Yeah.
2: Yeah, right, so...
3: Cut me off there, didn't I?

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.

0: Southampton's Community Radio. Hours FM. 24 hours a day. Hours FM. Online and on air.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा कितनों की मुझा रखी है सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा

0: हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है। शुक्रिया।
1: निसार मैं तेरी गलियों पे आ वतन, के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं हुणी ग्राउंड आया सा, घर प्रोग्राम तुहाड़ा लाया, डाउनलोड किया। तू बोल सिंह वीर असा कोई फरमाइश कर सा ना, कोई केड़ा गाना सुनना चाहे अपने वेले वाला या दोयां दा, जेड़ा गाना असा आखसा ला से ना, माड़े मैसेज ला पहुंचनी फिर मैं सुना।

0: तुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
2: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.
3: एक पल की लापरवाही।
4: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर उसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये जुल्फें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं। सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा, कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मैं कदों में वीरानी सी छा गई है, मैं कदों में वीरानी सी छा गई है, यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है। नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, नजरों के प्यालों से छलकते जाम ये, हर सू मैं कशों की बाढ़ लगा रखी है। हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम, मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है। सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें, क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है।
1: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
4: Ek pal ki laparwahi.
5: Uncle, mujhe to padhi ho ke aeroplane udana tha. Pilot banna tha. Mujhe padhi ho ke doctor banna tha. Main to sabse bada business start karna chahta tha.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: अस्सलामुअलैकुम। तो तेरे क्या आलिया? थोड़ा प्रोग्राम सुनने पे दोए चंगा प्रोग्राम पे होना पछतो लगी। अल्लाह कामयाबियां दे पुत्रा ते साड़ी भी फरमाइश कर लाई छोड़ो। जो गाना है जी जमा जा ट्रक ड्राइवर सड़कों ना राई।

0: 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours
2: FM. पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: FM News, Southampton's community radio, Ours FM.
1: अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे सनक में 1940 से लेकर 1990s तक। और इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं 9800720072। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914040। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम। आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले गीत की तरफ, और आज आपके लिए लेकर आया हूँ, शुरुआत करता हूँ प्रोग्राम सुमन कुलियानपुर और मुकेश की आवाज़ से, ये बहुत ही प्यारा सा गीत, अखियों का नूर है तू। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पर।

अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू, फिर भी बुलाए चले आएंगे। सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया।

होगा। ये था मूवी जौहर महमूद इन गोहा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया भर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और अगर इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072। और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07784691440। आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए लेकर आया हूँ, पेश कर रहा हूँ ये प्यारा सा गीत। मूवी का नाम है पूजा का, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ माला सिन्हा की आवाज़ से ये बहुत ही प्यारा से ये गीत, बंदा परवर, रात के अंधेरे में यू चोरी चोरी चले किधर। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए पेश किया है, बंदा परवर रात के अंधेरे में यू चोरी चोरी चले किधर, माला सिन्हा की आवाज से ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपको आपके लिए पेश किया। मूवी का नाम था पूजा का फूल। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और आपको इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ के आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। अपना कुछ मनपसंद गीत सुनना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 07786914400। यह है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, यह स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है और आपके मैसेजेस का इंतजार होता है। आवाज एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी चोरी चोरी, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत आजा सनम मधुर चांदनी में हम। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर। कई मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1956 की रिलीज मूवी चोरी चोरी, इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत आजा सनम मदनु चांदनी में हम। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1956 से आपने सुना अभी चोरी चोरी मूवी से आजा सनम मधुरू चांदनी में हम। अब चलते हैं कुछ 1970s की तरफ, और चलते हैं अब 1979 की तरफ, और चलते हैं मूवी सरगम। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत दफली वाले दफली बजा। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

दफली वाले दफली बजा मूवी का नाम था सरगम 1979 की रिलीज और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम की मीट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। अब तक के जो गीत सुने उम्मीद करता हूँ कि आपके पसंद के होंगे और अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072 पर, 0238198072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं 0778469140। और इस वक्त अगर आप फ़ोन कर रहे हो और फ़ोन बिजी जा रहे हैं तो ऑप्शन 4 दबाएं, ऑप्शन 4, और ऑप्शन 4 के जरिए आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं। आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ और इस वक्त आपके लेके जा रहा हूँ 1966 की तरफ, और 1966 की तरफ जाते हैं मूवी देवर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज़ से ये अगला गीत दुनिया में ऐसा कहीं सबका नसीब होता है। आइए सुनते हैं प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: वेलकम बैक टू आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो। आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 02381980072 पर, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए 07786914400। प्रोग्राम को जारी रखते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ से। एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूँ, मूवी का नाम है संगम। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो। आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मूवी का नाम है संगम और आवाज है मुकेश।

0: जमाना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं कभी नहीं

0: नहीं बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: चाचा

बहुत ही जबरदस्त एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया। ये मूवी का नाम था संगम और गीत था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0238198072 आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM। चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ मूवी कोहिनूर, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। आवाज़ है आशा भोसले और मूवी का नाम है कोहिनूर, 1960 की रिलीज। एंजॉय कीजिए ये अगला गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर। कई मजा ये सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1960 की रिलीज मूवी कोहिनूर से ये गीत हमने लिया, जादूगर कातिल। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत, जहाँ के आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072 पर, 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं 07786914400। और अगर मैसेज होना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072 और ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4, इसी ऑप्शन से आप हमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा हूँ मूवी का नाम है हवास। इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ़ एन कम्युनिटी रेडियो।

बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए पेश किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे सनम कदम आज के बाद। मूवी का नाम था हवास। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह कल आपके लिए पेश करूंगा सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करूंगा पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि आज आप हमारा साथ दे रहे हैं, कल भी आप हमारा साथ देंगे और मिल के हम इन्जॉय करेंगे पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा हूँ ये अगला गीत, मूवी का नाम है बाबुल, 1950 की रिलीज, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा गीत, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कई मजा ये सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

1950 की रिलीज ये मूवी बाबुल, और इसी मूवी से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपका कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381-9800-72। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914040। और अगर फ़ोन का मैसेज छोड़ना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381-9800-72 और ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन 4 दबाएं और वहां से मैसेज छोड़ दें, और जैसे आपका मैसेज मिले तो आपके लिए आपका मनपसंद जो गीत है वो भी लगा सकते हैं। आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और एक बार फिर आपके लिए पेश करता हूँ लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत, और ये है जो दिल में खुशी बनकर आए। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत आपने सुना जो दिल में खुशी बनकर आए। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। यह था एक बहुत ही ज़बरदस्त एवरग्रीन गीत जो आपने सुना जो दिल में खुशी बनकर आए, लता मंगेशकर की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अब अगले गीत की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये एक और एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूँ, और ज़बरदस्त आपके लिए गीत पेश करता हूँ एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज़ से। मूवी का नाम है बॉबी, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये एक एवरग्रीन गीत, झूठ बोले कौवा काटे। आइए चलते हैं इस प्यार से गीत की तरफ, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम।

0: doesn't mean you can ignore the crossing.
1: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
2: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
3: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
4: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
5: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
6: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
7: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
8: वेलकम बैक टू आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर मैं हूं आपका होस्ट अली और आप इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी गीत जहां कि आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे तो आइए चलते हैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं 1955 की तरफ चलते हैं और मूवी उरंग कटोला इसी मूवी से के लिए पेश करता हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा एवरग्रीन गीत ना तूफान से खेलो ना साहिल से खेलो मेरे पास आओ मेरे दिल से खेलो एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार कहीं मत जाइए सुनते रहिए आवाज़ एफएम कम्युनिटी रेडियो आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 एफएम

0: लो।
1: मोहम्मद रफी साहब की प्यारी सी आवाज से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत। मूवी का नाम था उरंग कटोला, 1955 की रिलीज, और बोल थे ना तूफान से खेलो, आवाज थी मोहम्मद रफी साहब। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आए होगा। ये था एक एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज ऑफ एंकमेंट रेडियो, आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। चलते हैं अब एक और एवरग्रीन गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ आवाज़ लता मंगेशकर जी, और इन्हीं की आवाज़ से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत। मूवी का नाम है अन्नारी, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत तेरा जाना। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कई मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

लता मंगेशकर की आवाज से ये बहुत ही जबरदस्त एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया, तेरा जाना दिल के अरमानों से लुट जाना, और मूवी का नाम था अनारी। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आवाज़ ऑफ इंक्यूमेंट रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। जब बात हो रही है एवरग्रीन गीत की, तो आपके लिए पेश करता हूँ एक और एवरग्रीन गीत जो कि है आवाज़ मुकेश, और कहा जाता है कि ये मुकेश की आवाज़ से ये अगला गीत जो है ये उसका मोस्ट फेमस गीत था। तो आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत 1961 की मूवी प्यार का सागर, इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ से, सदा खुश रहे तू जफा करने वाले। एंजॉय कीजिए ये प्यार सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

सदा खुश रहे तू। जफा करने वाले मुकेश की आवाज़ से ये बहुत ही ज़बरदस्त एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश किया। मूवी का नाम था प्यार का सागर और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। कहा जाता है कि ये मुकेश का बहुत ही मशहूर बहुत उसका बेस्ट गीत था, वो सैड सॉन्ग था, बेस्ट सैड सॉन्ग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आवाज़ ऑफ एंकमी टू रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazfm.co.uk पर। मैं हूं आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। इसी तरह आपके लिए पेश करता हूं एवरी संडे आपके लिए पेश करता हूं सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करूंगा 1947 से लेकर 1990s पाकिस्तानी प्यारे से नगमे। और उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आज आपने हमारा साथ दिया, इसी तरह कल भी आप हमारा साथ देंगे। याद रखें सुबह 10 से 12 बजे तक आपके लिए पेश करूंगा सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत 1947 से लेकर 1990s तक। आइए चलते हैं, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले गीत की तरफ। और एक बार फिर आपके लिए पेश करता हूं मूवी संगम, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूं ये अगला गीत। एक बार फिर एक एवरग्रीन गीत आपके लिए पेश करता हूं, ये मेरा प्रेम पत्र। आइए सुनते हैं ये प्यार सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एंकमी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

मूवी संगम से आपके लिए पेश किया ये प्यारा सा गीत, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपके आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह अगर आपको कुछ मनपसंद गीत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, और अगर लाइन पे ना कोई हो तो बिजी हो अगर लाइन तो ऑप्शन 4 दबाएं और वहां से अपना मैसेज छोड़ दें। इस तरह अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 07786914040। चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त आपके लिए लेके जाता हूँ 1957 की तरफ, और 1957 की मूवी नया दौर, इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये अगला गीत रेशमी सलवार कुर्ता जालीदा। एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। चलते हैं अगले गीत, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
1: Radio. The medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: एक पल की लापरवाही, आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है. Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है.
12: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
13: वेलकम बैक टू आवाज एफएम कम्युनिटी रेडियो. आपकी आवाज आपके शहर में 99.8 एफएम और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awaazfm.co.uk पर. मैं हूं आपका होस्ट अली और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम में सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहां की आपके लिए पेश करता हूं हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक. और उम्मीद करता हूं कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे. इसी तरह चलते हैं अब अगले गीत की तरफ. एंजॉय करते हैं कुछ और मजेदार गीत. 1949 की तरफ चलते हैं और मूवी का नाम है पतंगा. इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये प्यारा सा जबरदस्त एवरग्रीन गीत. एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत, मेरा पिया गया रंगून. आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस गीत के उस पर.
14: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ. मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ. हाँ हाँ

1949 की रिलीज मूवी पतंगा, इसी मूवी से आपके लिए पेश किया है ये प्यारा सा गीत। रोमांटिक और कॉमेडी मूवी पतंगा से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द हिंदी बॉलीवुड सिनेमा फ्रॉम 1949। आवाज थी चितलकार रामचंद्रा और शमशाद बेगम। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुनहरी यादें हिंदुस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करता हूँ हिंदुस्तानी प्यारे से नगमे 1940 से लेकर 1990s तक। और सामिन, अभी तक हम 1990s या 1980s की तरफ इतना गीत नहीं सुने, तो लीजिए आपके लिए पेश करता हूँ 1981 की मूवी लावारिस, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ ये ज़बरदस्त कॉमेडी और रोमांटिक गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एंड मूवी का नाम है लवारिस 1981। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार।

0: और जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे यंग नेम में, मेरे यंग नेम में, मेरे यंग नेम में तुम्हारा क्या काम है।
1: जी हाँ, मेरे यंग नेम है तुम्हारा क्या काम है। और ये था गीत मूवी लवारिस, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। मैं हूँ आपका होस्ट अली, और उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो गीत आपने सुने आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह आपके जो मनपसंद गीत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 02381980072, ऑप्शन 4 दबाएँ और वहाँ से अपना मैसेज छोड़ें, और अगले प्रोग्राम्स में आपके आपका मनपसंद गीत ज़रूर शामिल करूँगा। आइए चलते हैं अब अगले गीत की तरफ, और इस वक्त चलते हैं, रुकते हैं, अभी मेरे ख्याल में रुकते हैं 1980s और 1990s की तरफ। और इस वक्त आपके लिए पेश करता हूँ ये एक और प्यारा सा गीत, मूवी का नाम है सौदागर, और कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण की और सुखविंदर सिंह की आवाज़ से ये अगला गीत आपके लिए पेश करता हूँ, इलू इलू। एंजॉय कीजिए और मिलते हैं इस गीत के उस पार। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आवाज़ ऑफ एम कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM।

1991 की मूवी सौदागर से आपके लिए पेश किया है ये प्यारा सा गीत इलू इलू, और उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। आप सुन रहे हैं आवाज़ ऑफ एन कम्युनिटी रेडियो, आपकी आवाज़ आपके शहर में 99.8 FM, और दुनिया पर आप हमें सुन रहे हैं awazofm.co.uk पर। सामिंग प्रोग्राम का वक्त पूरा होता जा रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कल आप मेरा साथ देंगे प्रोग्राम सुनहरी यादें पाकिस्तानी की, जहाँ की आपके लिए पेश करूँगा पाकिस्तानी प्यारे से नगमे 1947 से लेकर 1990s तक। चलते जाते आपके लिए पेश करता हूँ ये आखिरी गीत 1994 के, चलते हैं मूवी मोहरा, और इसी मूवी से आपके लिए पेश करता हूँ पंकज उदास और सदना सरगम की आवाज़ से ये प्यारा सा गीत ना गजरे की दार। उम्मीद करता हूँ कि ये गीत आपको पसंद आएगा, और इसके साथ साथ अली को दीजिए इजाज़त। अनटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, लुक आफ्टर योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट जॉइन मी टुमारो ऑन सुनहरी यादें पाकिस्तानी गीत। अनटिल देन टेक केयर, बाय बाय, look after yourself and enjoy the rest of your day.

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
1: Radio, the medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
3: आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
4: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: एक पल की लापरवाही
5: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था पायलट बनना था मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी हो के डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
11: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
12: दोस्तों मैं हूं सीमा सरगम मेरा प्रोग्राम आवाज खैरियों की क्लब सुनना न भूलिए जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए खैरियों की गीत पेश किए जाते हैं अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें नंबर है 07784691440 रिमेम्बर आवाज खैरियों की Club every Sunday 6 to 8 PM.
13: Lighthouse International Church ki janib se
14: haftawar masihi program Noore Khuda
15: har jumrat subah 8 se 9 baje
16: Noore Khuda
17: har veerwar svere 8 to 9 baje tak
18: Noore Khuda
13: Awaaz Radio 99.8 FM par
19: Noore Khuda
20: इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं मसीही गीत और गजलें मसीही शायरी और कलाम-ए-मुकद्दस की मीठी मीठी

नमस्ते दोस्तों, आज के इस गाने सुने अनसुने कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम एक ही फिल्म से सीरीज के कार्यक्रम में सुनने वाले हैं 1991 में आई हिंदी फिल्म सड़क के गीत। इस फिल्म का संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इस फिल्म के बारे में आगे बात करेंगे, पर पहले आज का पहला गीत आइए सुन ले, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने इसे गाया है, समीर के बोल है।

सड़क फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने, प्रोड्यूस किया था मुकेश भट्ट ने और ये उनके प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के बैनर के तले बनी थी। इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग रॉबिन भट्ट ने लिखे। फिल्म की कास्ट की बात करने से पहले आइए इसका ये गीत सुन लें जिसके दो वर्जन थे। फीमेल वर्जन सुनने का अनुराध था पौड़वाल की आवाज में। सभी गीतों की तरह यह भी नदीम श्रवण के संगीत में है और इस गीत को लिखा है समीर ने।

इस फिल्म की मुख्य हीरोइन थी पूजा भट्ट। उन्होंने अपने पिता महेश भट्ट के निर्देशन में 1991 में 3 फिल्में की थी, जिनमें से एक ये फिल्म सड़क थी। इसके अलावा 2 फिल्में थी दिल है कि मानता नहीं और डैडी, और तीनों को ही काफी पसंद किया गया था। और ये जो अगला गीत है वो तो मुझे बहुत पसंद आया था उस समय, जिसे अनुराधा पौडवाल ने कुमार शानू के साथ गाया था। इसे भी समीर साहब ने ही लिखा है, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए।

पूजा भट्ट के ऑपोजिट पहले इस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को कंसीडर किया था, लेकिन बाद में ये फिल्म संजय दत्त को चली गई थी। उनके अलावा इस फिल्म में दीपक तिजोरी, नीलिमा अजीम, सोनी राजदान, अवतार गिल, मुश्ताक खान, जावेद खान, पंकज धीर, मनोहर सिंह, सदाशिव आमरापुरकर, सुहास भालेकर, कुमुद त्रिपाठी, जीपी सिंह, गेविन पकार्ड, योगी, जहांगीर इत्यादि की मुख्य भूमिकाएं थी। इसके संगीत अशोक शुक्ला द्वारा सुदीप स्टूडियो पर रिकॉर्ड किए गए थे और काफी पसंद किए गए थे। विशेष फिल्म्स के बैनर को वैसे भी अच्छे गीतों के लिए जाना जाता है। फिल्म की कहानी आधारित थी हॉलीवुड फिल्म टैक्सी ड्राइवर पर। मूल फिल्म मार्टिन स्कॉर्सेसी ने डायरेक्ट की थी और इसमें मुख्य भूमिका रॉबर्ट डी नीरो ने निभाई थी। चलिए सुनते हैं इसका ये गीत जो स्ट्रीट पर किरदार गाते हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं। समीर ने इस गीत को लिखा है और इस गीत को गाया कुमार शानू, देवाशीष दास गुप्ता और जुनैद अख्तर।

शाहिद कपूर को आज एक अच्छे डांसर के रूप में जाना जाता है। उनकी माताजी नीलिमा अजीम की इसमें मुख्य भूमिका थी ऑपोजिट दीपक तिजोरी के, और उन पर एक गीत फिल्माया गया था जिसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट भी थे। इस गीत को मैं कई बार रिवाइंड कर करके सुनता था, मुझे आज भी याद है साइड बी पर ये दूसरा गीत होता था। समीर का लिखे इस गीत को गाया है अनुराधा पौड़वाल, बाबला मेहता और कुमार शानू ने। सुनते हैं ये गीत तक दिन दिन तक।

ये फिल्म उस जमाने में बहुत सुपरहिट रही थी और इसका एक तमिल में रीमेक भी आया था फिल्म अप्पू के रूप में सन 2000 में। इस फिल्म का एक सीक्वल भी सड़क दो के नाम से 2019 में आया था, उसमें भी संजय दत्त और पूजा भट्ट ने फिर अपने रोल निभाए। उस जमाने में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कई बार नदीम श्रवण विदेशी गीत और पाकिस्तानी गीत से इंस्पायर होकर गीत बनाया करते थे। इस फिल्म का एक गीत ऐसा ही था, पर उस गीत को सुनाने से पहले आपको एक अनुराधा पौडवाल का सोलो मैं सुनाना चाहूंगा। इस गीत को रानी मलिक ने लिखा था, क्या सोचता है ऐ दिल। चलिए सुने ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज।

अब आते हैं पाकिस्तानी गीत जिससे आधारित इस फिल्म में दो भागों में एक गीत था। मुसर्रत नजीर ने एक गीत गाया था खलील अहमद की कॉम्पोजिशन में, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। उसी की धुन से इंस्पायर होकर नदीम श्रवण ने इस फिल्म में एक गीत रखा था, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। इसी गीत की धुन को मुखड़े के लिए हेट स्टोरी 3 में माल मलिक ने भी इस्तेमाल किया था। इस गीत के फिल्म में दो वर्जन थे, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

इस फिल्म में सिर्फ कहानी और धुनें ही नहीं चुराई हुई थी। इस फिल्म का यदि आप क्लाइमैक्स देखें, जिसमें संजय दत्त की फाइट सीक्वेंस थी गैविन पकार्ड के साथ, उसे भी चुराया गया था जॉन क्लॉड वन डैम की फिल्म साइबॉर्ग से, जो 1989 में आई। गैविन पकार्ड को उस जमाने में विलेंस के गोरे साइड किक के रूप में अक्सर देखा जाता था। तो ये थी इस फिल्म के बारे में बातें। आइए इस फिल्म का एक आखिरी गीत जो बचा है वो दो भाग में था, उसका पहला भाग आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में, जिसे सुरेंद्र साथी ने लिखा था। जमाने के देखे हैं रंग हजार।

चलते चलते इस फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस फिल्म में सदाशिव अमरपुरकर ने एक ट्रांसजेंडर ब्रothel ओनर का किरदार निभाया था जिसका नाम था महारानी। उनका ये परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद किया गया था जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। उस समय तक फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस होते थे, पर उनकी ये परफॉर्मेंस को देखते हुए उस साल पहली बार बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था और उन्हें ये स्पेशली उस जमाने में मिला था। तो इसी रोचक जानकारी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं अनुराधा पौडवाल और अभिजीत के गाए जमाने के देखे हैं रंग हजार के दो गाने वर्जन को, जिसे सुरेंद्र साथी जी ने लिखा है। आशा है आपको ये फिल्म की बातें और उसके गीत पसंद आए होंगे। तो सुनते हैं फिल्म सड़क का ये आज का आखिरी गीत। मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सी यू सून।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From Merriott to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours FM.

0: आवाज FM.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है।

0: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: I think there's any love lost between those two.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...
4: Quick,

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: Uncle, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

जाएगा। ए भाई मैं पिंकी में हूँ, क्यों एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

0: This is Natalie DeLuccio, and keep listening to Awaz FM.
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: If it's happening in Southampton, we've got the news. The Southampton Talking Newspaper, every Monday at 8 a.m. only on Awaz FM.

0: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
1: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
2: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
3: Awaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Ours FM 99.8.
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
1: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
5: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
1: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
6: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
7: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
8: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
9: जी सजनों तुसी सुनिया ए सॉन्ग वेलकम सॉन्ग ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
5: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोबी.
6: अस्सलाम वालेकुम.
5: वालेकुम सलाम.
6: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में.
5: हां जी शुक्रिया.
6: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज़ एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिज को जो है वो एक इस तरह आगे पहुँचाया है कि एक लिसनर शो, एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहाँ पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूम उन्हें फ्राहम होंगी आवाज़ एफएम. और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज़ एफएम की जानिब से. मेहरबानी तो आवाज़ एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ. बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत मिला जुला सा माहौल होता है. जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है.
5: और अजमल साहब इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है.
6: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को.
5: थैंक यू वेरी मच.
6: बस थैंक यू वेरी मच. और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आज ही डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब एंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला. और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं. तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. जिंदगी बखैर.
5: थैंक यू वेरी मच जी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.
6: आई लव यू ऑल.

0: I know from the public reaction that we've been greatly missed, Simon.
1: We certainly have, that's for sure.
0: Who else are you going to listen to?
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.

0: को अटकना नहीं आता तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।
1: That many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Hello, how are you? It's me, Yasser. You play any good song for me? Yeah? Thank you.
1: एक पल की लापरवाही
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
4: Thank you.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.